अक्सर अदाए ब्यूटीफुल है। जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है। लकी मेरा आसम अदाए ब्यूटीफुल है। जानती हूँ मैं तुझे तो कितना बड़ी फूल है। जानती हूँ मैं तुझे तो कितना बड़ी फूल है। अरे शादियों का सीजन ना एक रेड फूल है। कैसे हम ये कह दे

अरे ताजमहल बनवाना शाह जहां की भूल है, उसके पास पैसा अपने हाथ में तो फूल है। तूने गुस्से में फोन मेरा काटा, तो आशिक सरेंडर हुआ।

विनय कंकन मलाई कंकन यह गीत तपाई को माझ में राखी कृष्ण भक्त राय सुनीता थिम को आवाज रहेको थियो मीठो गीत थियो रात को समय 10:40 को